0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज चारों ओर के सर्व समानदारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव, सब दिखाई दे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो खुश रहते हो इसके मोबाइल।

c'est couché. Après.

0: juga apa nih? Bayi Benen. Tuh terus bertanya. Terus nih bertanya.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर, मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब सर्वशक्तिमान पाप सा

पास भी कोई छिपा हुआ चोर के तो नहीं है, चेक कर, नहीं तो माया आई कहां से, ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चीख करो तो माया ने कोई चोर के गेट तो नहीं बना के रखा है, और गेट बनाती कैसे है वो मालूम है आपकी जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना।

जैसे आगे बढ़

Hello, porque sei student o sei teacher. Dono me. Hello. Maya. फल पुरुषार्थ करती है मानो स्टूडेंट है बहुत अच्छा निश्चय मोदी सेवादारी सब में अच्छा है लेकिन पढ़ती है तो ये ट्रायल लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं सब रूप से मदद करूं. Same, man, same.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख

0: इस ब्रह्मांड जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देवान का मैपन करावनार करा रहा है। मैं निमित्त
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है। विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। Someone may out. जैसी कहावत है ज्यादा मीठे पार चीटियां बहुत आती तो इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
0: सुनते रहिए शिवारी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: किसने

0: पनीर का अर्थ है परिवर्तन करना। सिर्फ चिंतन नहीं, नहीं मेरे में है तो सही, है तो सही, है तो सही। ये स्वच्छ चिंतन नहीं, स्वच्छ चिंतन अर्थात परिवर्तन। तो रिजल्ट में बाप दादा सुना रहे हैं कि जब वाइटल रिजल्ट होगी उसमें प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होंगे। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुश दिमा रहे, खुश दिमा रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगे ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है, रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है, समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। जो पर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ एकदम न्यारी और प्यारी बन करके स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी चारों और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसा एक दो को सहयोगी बनाओ जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले, दाता बनकर सहयोग पाते नहीं। देखो सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजाधिकारी की सीट पर सेट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: DJ Frizzy. Jesse ye stol kar pehdiya hath bahwa apne control mein rehte hain aise man bote sanskar जब जाए जैसे जाए रोलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो अभी देखने में संस्कार मेरी है, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर, नंबर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

te. Capil câmpine. Ce-o să da? Atâți.

speak to me. But she must.

Sunday.

FM, die März.

0: सभी बातों को ठीक करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

FM。

0: busco. Osamei. मेरी के बजाय तेरे में चेंज कर दो. बाप को फिक्र दे दो और फखर ले लो. क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को फिक्र लेके फखर देने में.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्यों? पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई पाप का सुनई, परिवार का सुनई सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप। इस वर्ष क्या करेंगे? सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार गिराव नहीं। उत्साह भरा हो। सुने का वायुमंडल वाला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई।

0: watching Essie Abbey. Yay for the Tristirago. You call a belly valley. Amari body warki. Brahman body warki. Mochi badal is copy badal.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बस भी नहीं तो फर्श के समान इतना महत्व है। संगम के समय का सर्वशक्तियों की सर्व गुणों की परमात्मा प्यार की प्रमाण परिवार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन Shut up.

Kusiarzec.

0: Odokopi. Oh my god, Samilla. Beach bay. शरत पे आगे बढ़ो वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा
2: परमार बन जाए तो मानने
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर देने का दिवस आ जाता है।

Yeah.

Junk.

Souls.

Sonic.

Jawatan Jaya.

0: चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। सने का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट, तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सहज प्राप्ति होती है, गिफ्ट मांगी नहीं जाती है। सुत ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से रिटर्न में देती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sabe?

Okay.

Yeah.

Ich.

0: అనేకాత్మకు.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

God.

Scream.

Schon kann man das.

उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से

0: दिवस मनाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण नहीं होता।

是飞机，八个，给他那八个，可惜国家内内的人，可惜。

Shit.

0: 家一点，说不够天不地心给了这个呢，我那给心给了也心给了你，我那给心给了这个呢，爸爸给了。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबू

everybody.

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

number

इस दिन को महान समझते हैं जो बाप और बच्चों का सनबुक मिलन।

0: लेकिन अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो, वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा भी खुश है, कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी लिया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले, माँ बाप जब समाचार सुनते हैं ये ईमेल है ये है खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला लेकिन बच्चों के पास खुश होते सब सेवा का साधन समझ के यूज करना सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते, साधनों के वश नहीं होना लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले, हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने और अंत में भी नहीं रहेंगे, ये अभी के लिए सेवा बनाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप, साधन के

see that then. Yeah, I still. Ci tre se ha visto il tieno. Che se ixi con me Satan jus carteo e se pitch pitch me cuch sape Satan a che vene. Bine calo. Abis Satan par hate or abi exican Satan bich bich me abias caro. Jesse Satano me jitni practice karte ho to automatic chalta rehta hai na aise ek second pe sadhna kabhi abhyas ho aise nahi time nahi mila sara din. बहुत बिजी रहे बाप दादा ये बात नहीं मानते क्या एक घंटा साधन को अपनाया उसके बीच में क्या पांच से नहीं निकाल सकते इतना है कोई बिजी ऐसा कोई बिजी है जो पांच मिनट भी नहीं निकाल सके पांच सेकंड चलो है कोई ऐसा है निकाल सकते है बोलो पांडव निकाल सकते है तो निकालो बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी शिकल भी बिजी कर देते हैं बाप दादा मानते नहीं है जो चाहे वो कर सक अटेंशन कम है जैसे वो अटेंशन रखते हो ना 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण ऐसे ही सोचो 10 मिनट में ये काम करना है वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो 8 मिनट लगना है 6 मिनट नहीं 8 मिनट लगना है तो 2 मिनट साधना में लगो ये हो सकता है हो सकता है इससे पूछते हैं गायत्री से हो सकता है हो सकता है अच्छा तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय फोटो निकालने वाला होता है कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना खत्म

0: επιλαγατίο ως κοιτό μου βάρακε λίκεν σωά ονατία σάτνα πίτσι πίτσι μην να χαρνίσει τα κάβα του κάπαρ πάπαρτε ότι πίτατιε χατπάω πίτατιε. Σαντανά χασαμένη καλό το τσιούτα κάβατε να βοτούρωσε κουσί ότι ένα κουσί με καπίτα κάβατε νέο κάμι λακτσιάτιο παπτάτα το κέτιε και καφίσαμε. Conscious radio. Then I say, action conscious himar to melty. Waste to nahi jate. Lekin soul conscious himar or action conscious. मार्ग में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा होता है फर्क होता है हाँ तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो नहीं जोड़ते रहो बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करती है लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको सीकर निकालो मिनट निकालो निकालो सर हो सकता है सकते और जो ऑफिस में काम करती है वो हो सकते हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: क्योंकि हिम्मत दे बच्चे

Barbie. क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया। क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में

este nega. Do fiera de sangalapa.

0: Shant Atma ko sukh shanti ka anubhav kara sake. Bap dada ko dukhi bachcho ko dekh अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जन्म हुआ शर्म में पुरानी नेचर पुराना सुबह कहां से इमर्ज होते हैं। तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मरे है क्या? ब्रह्मांड जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्रह्मांडों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष बना रहे हो ना, कराते हो मुक्ति वर्ष है? मुक्ति वर्ष है 99 में आना, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथी लाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा अच्छा अच्छा सभी हाथ उठा रहे। अच्छा देखो हाथी लाना बहुत सहज है, होता क्या है वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, बोलो इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी Wow।

समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करूं, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो, सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद आनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारंभ बॉक्सर को अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बची, लेकिन बचने वाली दिन और डेट नहीं बताएंगे। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्यों? आपका अभी भी टाइटल है सर्व शक्तिवान, शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान भविष्य भी है, सर्व
पानी जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही, एक एक खजाने का गुण और शक्ति

Lavame. Sapo fare dire. Tutte botte mie. Teachers mie. Che teachers si to samar panu mie. Comania mie. Pervertiva le vie. Sapore di. Ma c'è. Savico chance. Je bota će bačunki to kafi sa mesi ali si ti ti nam bađe nam kogav čan smile ga mili to će ova sarba fare tika colta sta babke samne o bachya tuta jo bachya hai wa tuta ach ah achi tarah se haath lao dikhai de ach अच्छे अभी नीचे करो नीचे नीचे करो बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही तो बाप से भी बच्चों का प्यार और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण हैं कल के क्या बनेंगे बोलो बच्चे कल क्या बनेंगे देवता बनेंगे अच्छा कौन सा देवता बनेंगे पता है बच्चों में से कोई देवी नहीं बनेगा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी के मेजॉरिटी

bellissimo.

चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। सेवा को बढ़ाओ, अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को अटेंशन उस हलचल

विश्व कल्याणी का स्वरूप।

0: Ciao. Tedeschi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Some

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन।

श्रेष्ठाचार

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारत रूप से हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

0: चलने की सब्जेक्ट में पास हुए इसलिए कोई को फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपनी तरफ से 25 मार्क्स बनाई जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बनाई। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी ये मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट अभी से रखो और अगर अभी भी एक मास एक्यूरेट अकाउंट रखेंगे नंबर वन वाला तो बाप दादा श्रीमत नहीं कर सकते। श्रीमद न मानने से मार्क्स तो कट होती है ना, अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे और टीवी नहीं अपने ही दिल के टीवी में बाप दादा दिखाएंगे तो उसमें इस श्रीमत की मार्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सर्विस तो अच्छी हो रही है।

face.

0: समझते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह से कण की दृष्टि से भी प्राप्त हो। सभी मास्टर दाताओं जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे वैसे तो सभी का काम ये है। कभी भी किससे I'm

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दरी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आ गए। क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है, हो गया दिन। Oh.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तौरे की अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अलग पहले नेचर नहीं अलग पहला बना अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत तो अच्छा ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन तो मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरान के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके इसी शरीर भी इसी रखते है ना तो बोल्ड जाते है जहाँ भी बोल्ड नहीं चल और टाइट होगा तो बोल्ड नहीं सके अलग बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अलबेला हो जाए नहीं बापता तेने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, अभी सभी एक सेकंड में एक सेकंड एक मिनट नहीं एक सेकंड में मैं फ्रेश

शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फ्रिश्ता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नंबर वन तो है, अच्छे भी है, तो साथ में किट किट वाले भी है, लेकिन So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी उठ

Ezeitera Renga. Canto el ao. Renga. Renga. O sapo.

خوش مزاج چهره ایسے

Musik. Ich

しれない。歩くしかない。ヘーパさん、ディスコパさん、ネームワードと、あっち、ドア、イッドネクシミザーチ、パチュ

खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। बगैर यहां भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी। खुशी को जाने नहीं देना, है ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, देखना आपके सोन वाले आपके सेठ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सभी बच्चों को, सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थिति

संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देखा संगठन में रहते आत्मक दृष्टि, आत्मक वृत्ति, आत्मा आत्मा से से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। आप इस सेवा के विस्तार में चलना बोलना संपर्क में आना मर्ज हो गए, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गए। So

So

você. Saman sambarak meu. किसी भी आत्माओं

0: viajar. Coí por Sharat me. Menat samaste. Tu sabse sej por Sharat.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा से मिलने तक पहुंचे आगे।

0: कुछ भी हो वे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपने टीचर द्वारा उसका हाल करा देगा। दो दिन हो गया है, ऐसा है, ये नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो, आगे जाने चाहते हो, तो आगे जाने का यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, साथ साथ करते रहना कि नहीं जो भी आई है, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी

Carva Samantha Nevas.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा पूछते हैं, वो

Jesse.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उससे ज्यादा

Mischievous getter.

loco se pierde.

Sayong.

0: isa anubaw ko.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत। Revise.

Course. A bit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने

Nossa Senhora.

しい。

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से जाते

0: अवश्य में विश्वराज अधिकारी और द्वापर से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सहयोगी भी है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज क्या संकल्प किया? बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही बनना है, नहीं बनना ही है। कोई भी बातें हैं, बात के बजाय बाप को आगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Jai.

Never.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्वम

Sarva.

It's

0: fnecarme entre quitar balas.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को आर्डर कर सकते सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। Just

Sameme. Voll beinslässig.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को कल की

0: पिसार दिन में बीच बीच में ये अपना चाट जी करो सर्व खजाने जमा कितने की समृद्ध रहे कितने साधारण रहे अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प हर सेकंड हर श्वास
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Serie con Sebat e Marvin. Lekin Jesse Shastrom Yeah.

Merciful one.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। Baby,

इसलिए ये अलौकिक अवतरण का जन्म दिवस

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेंगे ही। लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, बाप
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: से माना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा किसानों के मालिक बच्चों के
3: Yes.

Să da cărticelul. So

पूर्वक नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Ya vigo. Sambal ke rakhna. Kyunki ye chabi Maya ko bhi bahut pyari. Isiliye dil ke dabbi mein is chabi ko sambhal ke rakhna. Dridhta hi safalta ki chabi, aur safalta paap ke saman banne सहज साधन. सदा निश्चय और निश्चित भावी है. स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी ये दोनों निश्चित है. ऐसे नशे में फकर में सदा उड़ते रहो.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा का आप बच्चों में उम्मीद है, और आएंगे ना वो तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। किया है ना वायदा? ये जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो ना मदद मिल जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हमें कल पहले भी थे, अभी भी है, और हर बनना ही है, ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे, 3रे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई पे कोई।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पद दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यारा बाबा जब दिल से कहते

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा मैं महान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी विशेषता को भी मेरा मान कर मैं का भान रखते इसको समाप्त करना देखो इसको बलि चढ़ाती है बकरी को। बकरी को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

0: शरारत करके समाप्त कर सकते हो। बर्थडे पर आए हो बाप की तो कोई सौगात तो देंगे ना, तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। ये महीन में बन यही बाप कहते हैं, आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सर

मेरी मत, जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा

叫，杰西叫，菲西，Manor Botico, Control कर सको, फिर संकल्प, स्वप्न में भी टच नहीं करे ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ है जहां जाओ जब तक जाओ तब तक ऑर्डर से चला सकते हो ऐसे ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय व्यवहार के समय संबंध के समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से विशेष सेवा

सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को सेंटर्स की।

जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालिया है। सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलप फिरके का चित्र सामने लाओ। जानते हो ना इसे नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से मिलते हो से

0: ऐसे समझते हो ऐसा नशा है नशा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

그러니까 말릭만 많았고 장하자오 지드나사메자오 제세자오 Sí. Api, api.

爸，这。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे चुराना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी काजे हैं छोटी छोटी जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे और मजबूत सामने पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है

0: के निकल भी सकते हैं ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मांस जमा करते जाओ, कट नहीं करो जमा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करते हो जो बात हो गई ना उसके क्यों क्या कौन कब कैसे इस क्यों क्यों में चले जाते। छोटी सी बात बड़ी कर देते और बड़ी बात तो मुश्किल होती।

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवानों इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अब सेट नहीं होंगे, बिना सीट के अब सेट होते। सीट है तो अब सेट नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने

परिवर्तक आत्माओं के लिए

Papa Johnny.

But

इसलिए।

about me. Up.

Tom.

0: देने वाले मास्टर दाता बनो, अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो कर अशांति चारों ओर, भिन्न भिन्न स्वरूप में भर रही, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख शांति का कारण अपवित्रता है, तो अपवित्र आत्माओं को डबल सेवा चाहिए, वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है। अपना ओलेना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए, वो है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य बच्चों के पास औरों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे चेहरे और चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Destiny.

to je moja.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। फायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रही है, रियलाइज करो, रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाए। इतने सब फायदा और फायदा उठाने वाले ही है। आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। बार बार रियलाइज करना, दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ना को 21 जन्म के लिए आलमेटी गवर्नमेंट की सील लगा देना और हाजी हाजी करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है। पहले कोई भी संकल्प समान बनना है तो समान करना भी है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे

Se adorcemos.

जवाब टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते है ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाऊं। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाऊं। सृष्टि चक्कर को देखो, सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना, सेवा की

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता। फोटो है देखो, एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे भगा रही है, ये खेल भी देखती रहे। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करें। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रखना, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। सुनाया

Tiens,

क्षमा करना ये एक कत है। दूसरा

सर्व और सदा संतुष्ट।

और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य

0: सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद तक के वृत्ति स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप ने अपना बनाया भ्रमर जीवन दी, तो भ्रमर जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, याद है वायदा, याद है आका दिलाओ, याद है अच्छा दिला रे, अच्छा याद है पक्का कि कभी कभी भूल जाते हैं। जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है बचपन का वायदा याद है, कितना सहज करके दिए। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी एक दो में आत्मक सने सने नहीं, आत्मक सने बाप दादा याद दिला रही है जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने पढ़े उमंग उत्साह से, बाप के आगे से कहा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी है ना कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रो रियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बेनकोटी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बेनकोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता

0: Bitte. Torno Saman. Torno Pavdada. Bacio Kato. Befikar Bacia Kato.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नंबर 4 है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है ये नहीं सोचना। अच्छा मैं 8 में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाएगा। तो 108
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: रिजल्ट निकली, लेकिन में भी फाउंडेशन पवित्रता स्वच्छ साफ और कोई भी भाव मिक्स नहीं। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो विश्व के परिवर्तकों, विश्व कल्याणकारियों, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई आपसे पूछे

essa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टर

0: भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वो आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है कि साधारण समझते हैं, ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना? सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पण साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। इस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। तो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर के

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े सहन करना पड़े सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उनों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवरिश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ और कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हो, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है। कोई ना कोई अरमास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते है तो क्यों? उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी से कम 6 मास में अपने को जीवन मुक्त जीवन मुक्त

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं, मैं कौन बाबा।

Surya, istatime, istatoh, cha.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी, सिक्किया भी देते हो तो सिक्किया के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो फिर ऐसा सने नहीं देना बाप। छोटे मित बने हैं, अटेंशन देते भी है, लेकिन और अटेंशन देंगे, संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्टि का किरणें पहुंचे, ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देते, लेकिन उन्हों में शक्ति ऐसी बढ़ो जो पाप से शक्ति ले आपके स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए, जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई सुनने का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव ये अटेंशन निमित्त बने हुए आत्माओं को रखना उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योग युक्त पर वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहती है तो उनका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा व बड़े निमित आत्माए का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्यों कि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके स्थान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनाओ। जिसको देखे लोग शिकल से वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव के बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। इसलिए जो भी मीटिंग में आए हो, हर एक जिम्मेवार हो, नहीं तो मीटिंग में नाम क्यों डाला। हिम्मत है ना तब आपका नाम हुआ ना। इसलिए

0: Dicente pio porta tacciante, cardi caprieta picarrero, liquen, tora prieta coparao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: massage itu. Bab data ke massage di kena. Bot. Ya dawar piara.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ निमित्त भाव आ जाए हर समय सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अभी भी बच्चे तो सेफ है।

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान रिलैक्स कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो माया के भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान कर सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते हैं उनको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं ना, मदद दे रहे हैं ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
2: तो बहुत जगह भी जाना पड़ेगा
1: जी,
2: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर, चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।